यो चाड़ पर्व में यूरो पेंट प्रस्तुत कर रंगीन से घर बरसिन उपहार रु 50,000 को यूरो पेंट को खरीद में पाउन होस् लकी ड्रॉ कूपन अनि पाउन होस् इन्वर्टर एसी एक टन डबल डोर फ्रिज इंडक्शन चूलो राइस कुकर वॉल क्लॉक अनि बम्पर प्राइस में पाउन होस् एक जोड़ी को लागि बाली टूर यूरो पेंट घर मात्र होइन रंगाउन होस् सपना पनि।

0: रेडियो भेरी एफएम 98.6 रेक्सी 2.7 मेगाहर्ट्ज
1: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टाइम चेक अहिले ठीक 9 बजेको छ
2: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी

0: FM 98.6 हर्रे बाटा 102.7 वीरेंद्र नगर सुर्खेत बाटा
1: रेडियो भेरी FM रेडियो भेरी FM
2: रेडियो भेरी FM 98.6 102.7 मेगाहर्ट्ज
3: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टाइम चेक अहिले ठीक 3 बजेको छ
4: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी
5: पाइपिंग सॉल्यूशन

0: रेडियो भेरी एफएम 98.6 मेगाहर्ज
1: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टाइम चेक अहिले ठीक 8 बजे को छ
2: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी

एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक. समय बदलियो, पुस्ता फेरियो, तर साथ साथ उस्तै छ.

0: रेडियो भेरी एफएम 98.6 मेगाहर्ट्ज
1: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टाइम टेक अहिले ठीक 8 बजेको छ
2: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेक द डिफरेंस फील द एनर्जी
3: समय बदलियो पुस्ता फेरियो तर साथ साथ उस्तै छ